0: तन मन फिक्का हो ए फिक्को फिक्का से दिए फिक्के फिक्की सो ए फिक्का दरगे सटिए मधुका फिक्का पाए फिक्का मूर्खा किए पाणा लह सजाए महला पहला।
1: पंद्रह झूठे प्याज बाहर दुनिया अंदर फैल अठ सठ तीर्थ जे नहावे उतरे नाही मैल जिन पट अंदर बाहर बाहर गुदड़ते पले संसार तिन्ने हो लगा रे छेती दिरिक देखने विचार रंग हसे रंग रोवे चुप्पी कर जाहे परवाह नाहे किसे केरी बात सच्चे ना दरबार ऊपर खर्च मंगा।

एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपौ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैपं गुर प्रसाद चक्र चिहन अर बरन जात अर पात नहिन जेह रूप रंग अर रेख पेख को कहना सकत के अचल मूरत अनपौ प्रकाश तोज कह जाय कोट इंद्र इंद्राण साह साहान गण जाय त्रिपवन महीप सुर नारे असुर नेत नेत वन तृण कहत त्वय सर्व नाम कथा कवन कर्म नाम वर्णत सुमत अंत न पावत देव सबै मोन इंद्र महाशिव जोग करी फुन वेद बिरंच विचार रहेओ हर जाप न छाड़ेओ एक करी मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है संगत श्रेष्ठ निहाल करी रामदास गुरु जग तारन को गुर जोत अर्जुन माहे तरी रामदास गुरु जग तारन को गुर जोत अर्जुन माहे तरी अगन ना दह पवन नहीं मगना है तस्कर नेर ना आवै राम नाम तन कर संचौनी सो तन कत ही न जावै हमरा तन माधव गोविंद तरनी तार एह सार तन कहिए जो सुख प्रभ गोविंद की सेवा सो सुख राज ना लहिए तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सज्जन सोहेले राखहु राखनहार दयाला नानक करके गोले हों आया दूर हों चल कर मैं तकी तव शरणाए जियो मैं आसा रखी चित मह मेरा सब दुख गवाए जियो अंदर सच्चा ने हो लाया प्रीतम अपने तन मन हुए निहाल जा गुर देखा सामने सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दुख जाए
ਹੋਵੇ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸਹ ਕੁਰਸਹ ਚਟੀਐ ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਟੀਐ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹ ਸਤਿ

चौर बड़ी बड़ी बड़ा पार तेरा मर्तबा रंग प्रंग नेक जप करतबा जी अंत जियो सब जान ला सब कुछ तेरे वास तेरा कर पला तेरे कर आनंद बधाई।

जाइय तेरा अंत न पारा वरिया। राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगम अगम अपार। सब त्यावह सब त्यावह तुद जी हर सच्चे सिरजनहार। सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातार। हर त्यावहु संत हो जी सब दुख विसारन हार। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचार। तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समान। एक दाते एक भेखारी जी सब तेरे चोज विडाण। तू आपे दाता आपे भुगता जी हों तुद बिन अवर न जान। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख बखाण। जो सेवह तुद जी जन नानक तिन कुरबाण। हर त्यावह हर त्यावह तुद जी से जन जुग मह सुखवासी। से मुकत भय जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी। जिन निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जी तिन का पौ सब गवासी। जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी। से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंत। तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनक अनेक अनंत। तेरी अनक करह हर पूजा जी तप तप है जप है बेअंत। तेरे अनेक पढ़ है बहु सिमरत शास्त जी कर किरिया खट कर्म करंत। से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंत। तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड़ अवर ना कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निह चल करता सोई। तुद आपे भावै सोई वरतै जी तू आपे करहै सो होई। तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावै करते के जी जो सब सहका जान ओई। आसा महला चौथा तू करता सचियार मैडा साई। जो तो भावै सोई थीसी जो तू देहे सोई हो पाई रहाओ। सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनों कृपा करहै तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मन मुख गवाया तुद आप विछोड़िया आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी जंत सब तेरा खेल विजोग मिल विछुड़िया संजोगी मेल। जिसनों तू जाना एह सोई जन जाने हर गुण सद ही आख बखाण। जिन हर सेव्या तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अवर न कोए। तू कर कर वेखै जाणह सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला तेत सरवरड़ भई ले निवासा। पाणी पावक तिन्ह किया पंक जो मोह पग नहीं चालै। हम देखा तह डूबियले मन एक न चेत समूढ़ मन। हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ। ना हो जति सती नहीं पढ़िया मूर्ख मुगदा जन्म भया।
प्राणवत नानक तिनकी शरणा, जिन तू नाहीं विसरिया। आसा महला पंजवा, भई प्रापत मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी वरिया। अवर काज तेरा कितना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कवियो बाच बेनती चौपई। हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा। ताव चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रतपार। हमरे दुष्ट सबै तुम काव हो, आप हाथ दे मोहे बचाव हो। सुखी वसै मोरो परिवार, सेवक सिख सबै करतार। मोर अच्छा निज कर दे करियै, सब बैरन को आज संघरियै। पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊँ, जो वर चाहो सो तुम ते पाऊँ। सेवक सिख हमारे तारिय है, चुन चुन सत्र हमारे मारिय है। आप हाथ दे मुझे उबरिय, मरण काल का त्रास निवरिय। हो जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जो करियो रक्षा। राख लिहो मोह राखण हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बप धरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैंत जक्षण उपजायो। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह बध कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचरी असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, घट घट के पट पट की जाने। जब उद करख करा करतारा, प्रजा धरत तब देह अपारा। जब आ करख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह धर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब धारै, आप अपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार निर्वकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूढ़ उचारत भेदा, जाको भेव न पावत बेदा। ताको करपाहन अनुमानत, महामूढ़ कश भेद न जानत। महादेव को कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तुह तेती। तुमरा लखा न जाय पसारा, किह बिद सजा प्रथम संसार। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कही भूपा। अंडज जेरज सेत जकीनी, उत्पुज खान बहुर रच दीनी। कहूँ फूल राजा हुए बैठा, कहूँ सिमट पायो शंकर अकैठा। सिगरी सृष्ट दिखाई अचंपव, आद जुगाद स्वरूप सुजंपव। आव रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो। दोस्त जीते उठवाती उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुझ तब शरणी परे, तिनके दुष्ट दुखत हुए मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो काल को एक बार त्याय है, ताके काल निकट नह आय है। रक्षा हुए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काल। कृपा दृष्ट तन जाहे निहार हो, ताके ताप तनक मह हर हो।
रिद सिद्ध कर्म सब होई, दुष्ट शाह स्वै सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फांसते ताहे उबारा।

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तां पाया सहज सेती मन बजियां बधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईयां शब्दो तां गावो हरि केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारण अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारना।

तुमरी शरण तुमारी आसा तुम ही सज्जन सुहेले राखो हो राखण हार दयाल नानक कर के गोले वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत शाड बिखै बिख खाई। माया मोह भरम पै भूले, सुत धारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो सरनाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो सरनाई। सो कहो टल गुर सेविया, अहनस सहज

कुसरनाय। निमाण्यों के मान, निताण्यों के दान, न्योट्यों की ओट, न्यासर्यों का आसरा,

गया होव च चार कूड़िया होव च पाप पुन विचार होव च नरक सुरग अवतार होव च हसै होव च रोवै होव च भरिए होव च धोवै होव च जाति जिनसी खोवै।

0: नानक भक्ति जे रपै कूड़ सोए न कोई महला पहला।
1: लब पाप दोए राजा मेहता कूड़ हुआ सिकदार। काम ने सर पुछिए बह बह करे विचार। अंधी रैयत ज्ञान विहोनी पाए परे मुरदार। ज्ञानी नचे बाजे बावे रूप करें सिंगार। उच्चे कुके बादा गावे जोदा का विचार। मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत संजय करे प्यार। धर्मी धर्म करै गवावे मंगै मुख द्वार। जति सदावे जुगत न जाने छड बह करवार। सब को पूरा आपे होवे घट न कोई आखे पत परवाना।

0: सदा अकल लिव रह करम सुचाचार दुरम स्पूत जो निवे खवे कस बिमल विचार एह तत् जान्यो सर्वगत लख बिडाणी सहज पाए संचयो किरन मत कल बाणी गुर गम प्रमाण तै पायो सत संतोख समाज लयो गुर परस्यो कल समुल वै जन दर्शन लहने पयो मन विश्वास पायो गहर गोदर दियो गर नास्ता नठ्यो अमे अंतर्गत पियो रिद विगास जाग्यो लख कल तरी जुगंतर सतगुरु सहज समाद रव्यो समान निरंतर उधारो चित दारिद हरण पिखंते कल मतसन सद रंग सहज कल उचर जस जंपो लहन रसन।
1: नाम अख नाम आधार अर नाम समाध सुख सदा नाम निशान सो है रंग रत्तो नाम स्यो कल नाम सुर नर बो है नाम परस जिन पायो सत प्रकट्यो रव लोए दर्शन।

0: बुझ विचार पावे, कल माहे रूप करता पुरख, सो जाने जिन किछ कियो, गुर मिलियो सोए पिखा कहे, सहज रंग दर्शन दियो।
1: सतगुर नाम एकले मन जपे दड़ो, तिन जन दुख पाप कहो कत हो जियो, तारण तरण खेण मातर जा को दृष्ट तारे, सब तो रिद विचार काम करो दख वह जियो, जी अन्न सबन दाता अगम ज्ञान बिखे आता, एन सत्यान तावे पल कन सो वह जियो, जा को देख तदरिद्र जावे नाम सो निदान पावे, गुरमुख ज्ञान दुरमत मैल तो वह जियो, सतगुर नाम एकले मन जपे दृढ़, तिन जन दुख पाप कहो कत हो वह जियो।
2: अमृत प्रवाह सर अतुल भंडार पर, परहित पर अपर अपार पर, अपनो पावन कर मंत्र ना दूसरो थर, ओपत परलो एक निमख तो कर, आन नाही समसर उजियारो निर्मर, कोट पराचित जाहे नाम लिए हर हर, जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म समसर।

पै पुले सुत दारा से उप्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत देख।

दूसर नाही ठाव कापह जाइया आठ पहर कर जोड़ सो प्रभ ते आइया ते आए सो प्रभ सदा अपना मनहे चिंदिया पाइया ताज मान मोह विकार दूजा एक सियो लिव लाइया अर उपमान तन प्रभु आगे आप सगल मिटाइया बिनवंत नानक तार कृपा साच नाम समाइया सलोक रे मान ताकौ ते आइया सब विद जाके हाथ

0: कहत नाए हो तुटै ना मल लगे ना हो जले ना जाए तन सुमन सुनान का जो गल चल पाए चौकड़ मुलनाया बै चौके पाया सिखा कन चढ़ाइया गुर ब्राह्मण थिया ओह मुआ ओह चढ़ पया बेतगा गया मल्ला पहला
1: लख चोरियां लख जारियां लख कूड़ियां लख गाल लख ठगियां पहनामियां रात दिन सी नाल तग कपाहों कत्ती है बामण बटे आहे कोहे बकरा रिन खाया सबको आखें पाए होए पुराना सुटिया पी फिर पाया हो नानक तग ना टुटई जे तग

0: भाई अंतर पूजा पढ़े कतेबा संजम दुर्गा भाई छोड़ी ले पखंडा नाम ले जाहे तरंदा मल्ला पहला
1: मानस खाने करें निवाज तिने
0: छुरी
1: छुरी बगान तिन गल ताग तिन घर ब्राह्मण पूरे नाद ओना पे आवे ओई साद कूड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करें आहार सर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहे भरपूर मत्था टिक्का तेड़ धोती का खाई हर श्री जगत का साई नीर बस्त्र पैर हो मैं पर

कड़ी कार ऊपर आए बैठे कूड़े यार मत पिटे वे मत पिटे एहो अन असाडा फिटे तन फिटे फेड करेन मन झूठे जुली परेन कहो नानक सच त्याई है सुच होवे ता।